का ये स्पॉटी अंदाज है। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक विजन है जिससे हमारा देश एक फिट, एक्टिव और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। बात करें खेलो इंडिया प्रोग्राम की, ये लॉन्च हुआ था ईयर 2018 में। इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आजकल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, स्पोर्ट्स भी एक प्रॉमिसिंग करियर बन चुका है, पर कई टैलेंटेड बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, कोचिंग या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। जी हाँ, खेलो इंडिया का मेन गोल है ग्रास रूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना और स्पोर्ट उनको जो है खेलने के लिए सपोर्ट करना। अब होता यह है कि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ये स्कीम इंश्योर करती है कि हर एक यंग एथलीट को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपना टैलेंट दिखा सके। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे भी किए जाते हैं, तो एनुअल खेलो इंडिया गेम्स स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल का नेशनल गेम्स इनको कहा गया है। इनका ये गेम्स होते हैं जहां देश भर के टैलेंटेड प्लेयर्स कम्पीट करने आते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो सिलेक्टेड एथलीट्स को कुछ 5 लाख रुपए पर ईयर तक दिए जाते हैं एज अ स्कॉलरशिप उनको मिलते हैं, और या फिर हो सकता है कि 8 साल तक उनको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और इक्विपमेंट्स के लिए भी दिया जाता है। जिन बच्चों में टैलेंट है वो देखिए, टैलेंट जो है कभी छुपता नहीं है, और सरकार इसीलिए ये मूवमेंट को लेके आई है ताकि जो बच्चे टैलेंटेड है वो पीछे ना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बात करें देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो छोटी सिटीज और टाउन में मॉडर्न स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं और ज्यादा। इनफैक्ट सर्टिफाइड कोचेस, टैलेंटेड जो स्काउटिंग है और साथ ही परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे फीचर्स से एथलीट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। ये मूवमेंट सिर्फ मेडल जीतने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक माइंडसेट क्रिएट करता है जिसमें हर बच्चा स्पोर्ट्स को सीरियसली जरूर लेता है। तो अगर आप में भी है ये बात तो आप भी जुड़ जाइए इस मूवमेंट के साथ। चलिए फिलहाल आज हमने जाना है कि ये जो खेलो इंडिया मूवमेंट है ये क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या है, ये कब लॉन्च हुआ और इसे किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और क्यों देना चाहिए और क्यों जरूरी है इसके साथ जुड़ना, चलिए बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता रही हूँ बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, हम बात करें हमारे सेगमेंट पावर प्ले विद आरजे साक्षी के, इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब जी हाँ, खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सरकार जो है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है, वो हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, ना सिर्फ स्कूल लेवल के बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के, कि उनका जो हिडन टैलेंट है वो हिडन ना रहे बल्कि देश के लिए वो देखिए आगे बढ़ते रहे, कोई भी चीज़ की कमी ना हो, इस गैप को पूरा करने के लिए कि उनको सही कोचिंग मिले, सही इक्विपमेंट मिले, सही जगह खेलने के लिए, ताकि वो जो है अपने टैलेंट को और ज़्यादा उभार सके और ज़्यादा जो है वो अच्छे से सीख सके। इसीलिए खेलो जो है मूवमेंट जो है वो लेकर आई। इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। जी हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये 29 अगस्त 2019 यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन इसे लॉन्च किया गया, और ये इनिशिएट किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज के देखिए जो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, इसमें फिटनेस एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है, और इसी थॉट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फिट इंडिया मूवमेंट। इनफैक्ट देखिए, इस मूवमेंट के लिए पीएम मोदी ने खुद कहा था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया का मकसद है हर भारतीय को हेल्थ और वेलनेस के प्रति अवेयर बनाना, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस गोइंग या कोई रिटायर अगर हो चुके हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना कि भाई हम ये सोचते हैं कि खेल कूद वाली बात है तो सिर्फ बच्चों को ही करना चाहिए, हम बच्चों को आगे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे जो आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, हर किसी को फिटनेस जो है ये ज़रूरी है उन्हीं के लिए, और ये नेसेसिटी हमारी, कोई ये जो है लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत जो है अब बन चुकी है। अब बात करें इस मूवमेंट के गोल की, तो देखिए फिजिकल फिटनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, रोज़ाना एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी डेली हैबिट्स को इंकरेज करना, मेंटल वेलनेस के प्रति थोड़ा सा और सजग होना यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और हेल्दी रूटीन प्रमोट किए जाते हैं इसी मूवमेंट के अंदर। इनफैक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस और मिनिस्ट्रीज सभी को फिट इंडिया सर्टिफाइड जो है बनाया जा रहा है, जहां रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज कंपलसरी कर दी गई हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप और फिटनेस स्कोर ट्रैकर जैसे टूल्स भी जो है वो लोगों को डिजिटली एक्टिव बनाए रखते हैं। आज हर स्कूल में फिटनेस वीक्स और हर ऑफिस में वेलनेस ब्रेक और साथ ही हर मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक क्लब शुरू हो गए हैं। फिट इंडिया अब एक मूवमेंट से ज्यादा एक लाइफस्टाइल जो है ये बन चुका है। जब हर गली में फुटबॉल घूमेगा, जब हर बच्चा योगा करेगा, जब हर स्कूल में एक खिलाड़ी पैदा होगा, तभी तो इंडिया ट्रूली बनेगा फिट भी और हिट भी। चलिए, इसी के साथ ये तो बात रही हमारे आज के सेगमेंट में। देखिए स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना, इस मूवमेंट के बारे में पता होना, स्पोर्ट्स के बारे में। और क्योंकि देखिए यही जो स्पोर्ट्स है ना, पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आजकल ये दोनों ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप खेल कूद करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपने फोकस उस पर भी रखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो अगर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो यही एक करियर ऑप्शन है, बल्कि अब करियर ऑप्शन आपका स्पोर्ट्स में भी है। और इसीलिए सरकार जो है ऐसे कुछ मूवमेंट्स लेकर के आ रही है आपके पास, ताकि आप फिट भी रहे और हिट भी। चलिए इसी के साथ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आगे और भी होंगी बहुत सारी बातें, एक बहुत ही खास सेगमेंट जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ, और सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। तो चलिए जल्दी से अपने मोबाइल फोन्स रखिए तैयार, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ आपसे सवाल, कुछ सवालों के जवाब आप देंगे, और उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रिक है इसमें, यानी कि कैसे सवाल होने वाले हैं और इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है। बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। जी हां, बातें हमारी चल रही हैं और अभी बात करें हमारे अगले सेगमेंट की, जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का। जी हां, बात कर रही हूं हमारे अगले सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद की। और इस सेगमेंट में आपसे पूछती हूँ कुछ सवाल और आपको दे रही है कुछ जवाब। और जी हाँ, जिसके सवालों के जवाब सही रहे और पूरे महीने आप कंसिस्टेंट होके जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं, तो देखिए मैं आपको बुलाने वाली हूँ रेडियो मानव रचना और आपको मौका मिलेगा यहाँ रह के मेरे साथ लाइव बातचीत करने का और सभी आरजे से मिलने का भी। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पर आज का क्या है पहला सवाल ये आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले भाई रेडी होने का भी वक्त देना होगा, बिल्कुल देना होगा, क्योंकि आपके मैसेजेस आ जाते हैं कि साक्षी पहले बता तो दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब शुरू होने वाला है हमारे सेगमेंट का पहला सवाल आने वाला है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। और देखिए, अब मैं आपके साथ रहती हूँ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, और होती हैं हमारी बहुत सारी बातें। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं ना अब ये सेगमेंट्स लेकर आती हूँ आपके लिए। जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं दिल धड़कने दो, ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। और उसके बाद आता है स्ट्रेच प्लीज सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। और फिर आ जाता है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। और इसी के साथ साथ आ जाता है हमारा आखिरी, जो कि है कौन बनेगा सेहतमंद, और इसमें हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग क्विज। आपसे सवाल जो है वो आपसे पूछती हूँ मैं, और जवाब आपको देने होते हैं फटाफट, और जो देगा सही जवाब हर महीने कंसिस्टेंट होके और बिल्कुल सही जवाब देगा, उसको मिलेगा मौका यहाँ मेरे साथ लाइव बातचीत करने का, रेडियो मानव रचना आने का, और साथ ही सभी आरजे से मिलने का भी। इसी के साथ साथ फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, पहला सवाल आपसे पूछती हूँ, और बड़ा ही वैसे तो आसान सा सवाल है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा आप और इसका जवाब जो है वो दीजिएगा, क्योंकि सवालों के जवाब ना बहुत ही आसान है और आप आसानी से दे भी देंगे। पहेली है बड़ी आसान सी, और पहेली है रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। चलिए, ये है आपकी पहेली और इसका देना है आपको जवाब, और जल्दी से झटपट से दीजिए जवाब, क्योंकि आपके जवाबों का इंतजार मुझे है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, बड़ी आसान सी आज मैंने पहेली पूछी है, आपको फटाफट से जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ एक बार फिर से पहेली में दोहरा देती हूँ, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देंगे आप, और उसके बाद आपको बताने वाली हूं क्यों है ये इतना जरूरी। चलिए बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।
1: मीठा

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में करते हैं हम बहुत सारी बातें। फिलहाल बात करें हमारे सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में, एक बहुत ही खास पहेली मैंने आपसे पूछी है, बड़ी आसान सी पहेली, मतलब इस पहेली में ना जवाब है। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि एक बार पहेली मैं दोहरा देती हूँ और उसके बाद आप देखिए जल्दी जल्दी जो जवाब आया ना, जिसको सबसे पहले जवाब आया वो भी आपको जरूर बताऊंगी। पहेली है, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। तो देखिए इसका जो जवाब है ना इसी पहेली के अंदर है। वही देखिए, प्यास जो है ये बहुत ज्यादा हमें लगती है गर्मी के इस मौसम में, और आपको भी ये पहेली सुन के तो लगी गई होगी। जी हाँ, बॉडी का यानी कि हमारे शरीर का 70% पानी जो है ना यही हमारी बॉडी में होता है। जवाब है पानी जो कि है इसका सही जवाब। और जिस जिसने मुझे जवाब दिए हैं, देखिए पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप मुझे फटाफट से जवाब भेजते हैं। अब देखिए किसी ने कुछ लिखा है तो किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने लिख के दिया है कि हमारी बॉडी में 70% खून होता है, तो किसी ने लिख के दिया है कि पानी होता है। तो वही जिस जिसने पानी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। और साथ ही साथ जो सबसे पहला जवाब जिसने मुझे दिया है वो और कोई नहीं, हमारी लिसनर है, जी हाँ, जिनका नाम है मोनिका जी। मोनिका जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है और बहुत तेजी से आपने दिया है जवाब। देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपको अपनी उंगलियां जो है ये चलानी होगी ताकि आप फटाफट से मेरा सवालों का जो है मेरे जवाब आप दे सके, पहेली का जवाब दे सके। तो चलिए कौन बनेगा सेहतमंद में, जो हमने पहला सवाल पूछा उसका जवाब दिया हमारी लिसनर मोनिका जी ने। चलिए एक और आपसे पहेली पूछने वाली हूँ और आपको बता दूँ, देखिए पानी की हम बात करें, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए, और आपको बता दूँ हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और ऐसे में अगर आप सेहतमंद रहेंगे ना तो देखिए आप ही को फ़ायदा है इससे, और पानी पीते रहना है। और ज़रूरी नहीं है कि देखिए आप ना सिर्फ लिक्विड डाइट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पानी पीते रहे, सिर्फ पानी ही पानी आपको पीना है, आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, आप जूस कोई पी सकते हैं। लिक्विड डाइट इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, लेकिन जो पानी काम करता है ना वो और कोई नहीं करता। ऐसा होता है ना कि हमें जब प्यास लगती है तो हमारी जो प्यास है सिर्फ और सिर्फ पानी ही बुझा सकते हैं। आप कितना भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, आप कोई भी जूस ले लीजिए, लेकिन जो पानी से हमें सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। पानी की ज़रूरत सभी को होती है, पानी ज़रूरी भी है। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर रहती हूँ आपके पास 9 बजे तक रोजाना, यानी कि अब हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ मैं 7 से 9 बजे तक। बहुत सारी हो रही हमारी बातें। सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में, मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ पहेलियों के जवाब। और देखिए, आप सही सही जवाब तो दे रहे हैं। अब अगली पहेली का वक्त हो गया है और यहाँ पर अगली हमारी पहेली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। ये है ये पहेली और फटाफट से आपको इसका जवाब जो है वो देना है। और आपको बता दूं, मैं एक बार फिर से पहेली दोहरा देती हूं ताकि आपको ये ना लगे कि साक्षी ने पहेली तो बताई लेकिन क्या बताई, हमें याद क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि एकदम से हम भूल जाते हैं ना, कभी एकदम से हम याद करते हैं अरे क्या था क्या था, फिर एकदम से भूल जाते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। अब आपको इस पहेली का देना है जवाब। मैं कर रही हूँ आपके जवाबों का इंतजार, फटाफट से दीजिए जवाब और अभी फिलहाल कहीं मत जाइए। और नंबर एक बार बता देती हूँ आपको फिर से, 8010781078। इस नंबर पे आपको देने हैं जवाब। जो सबसे पहले सटीक जवाब देते हैं, देखते हैं कौन है वो लोग। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनोवरेश्रा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ। और आपको बता दूँ, आपके लिए कमाल के प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी लेकर के आती हूँ और उसमें हम करते हैं बहुत सारी बातें। फिलहाल सेगमेंट चल रहा है हमारा कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक पहेली जो है मैंने आपसे पूछी है, इसका जवाब जिसने सही दिया, सटीक दिया और रोजाना जो जवाब देगा 1 महीने तक रेगुलर रहकर, कंसिस्टेंट रहकर, उसको मौका मिलेगा हमारे रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आने का और लाइव बातचीत करने का और हमारे सभी आरजे से भी मिलने का। तो चलिए आप दीजिए पहेली का जवाब। एक बार फिर से पहेली जो है मैं दोहरा देती हूँ। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। जी हाँ, इसका जवाब आपको देना था और इसका सबसे पहले जो जवाब दिया है हमारे लिसनर बबलू जी ने जवाब दिया है। जी हाँ, बहुत सारे जवाब यहाँ पर मेरे पास आए हैं लेकिन जो सबसे पहले सटीक सही जवाब आया है वो आया है हमारे लिसनर बबलू जी का, जिन्होंने लिखा है कि ये जो है इसका नाम है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। ये हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ये इनफैक्ट आपकी एक अच्छी हैबिट है, अगर ये इनफैक्ट एक अच्छी हैबिट है अगर आप इसे रोज़ाना करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल जो है ये बदल जाती है। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, रोजाना सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ बातें आपसे करती हूँ बहुत सारी। अच्छा, अभी ना मैंने आपको पहली पूछी और कई सारे जवाब भी आपके आए हैं और आपका इस तरह से पार्टिसिपेट करना, देखिए यही इम्पोर्टेंट है कि हम जहाँ भी हम कुछ कर रहे हैं ना, मतलब एक पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए और साथ ही इससे हमें खुद भी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज बहुत सारी हमने बातें करी हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में हमने बहुत सारी जानकारी जो है मैंने आपको दी है और आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो जाता है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि अब आने वाली है RJ दीक्षा जो करेंगी आपसे बहुत सारी बातें। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं हर हफ्ते, उसका नाम है सुरक्षा संवाद। एक ऐसा प्रोग्राम जो फरीदाबाद पुलिस के साथ अधिकारियों के साथ बातचीत के द्वारा आप तक लाया जाता है, ताकि आपको मिल सके सटीक जानकारी और आप रह सके अपने शहर में सुरक्षित। सुरक्षा संवाद में आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे सुरक्षा संवाद करने वाले हैं जो महिलाओं से जुड़े हैं। वैसे तो महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को, और बातें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते हैं, और बहुत सारी महिलाओं की जो योग्यता है या उनकी काबिलियत है उसको सराहा जाता है। यह अपने आप में बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आधी आबादी यानी महिलाएं इस देश में नहीं, इस दुनिया में कहीं ना कहीं विक्टिम्स ऑफ वॉर भी कहलाई गई हैं। दुनिया में कहीं पर भी इतिहास गवाह है युद्ध हुआ है तो महिलाओं पर सबसे पहले अपराध हुए हैं। आज जमाना बदल गया है, युद्ध आज भी है, चाहे न्यूक्लियर की धमकी दी जाती हो या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ ज्यादा एडवांस तरीके से युद्ध किए जाते हो, लेकिन फिर भी महिलाओं की कुछ स्थिति ऐसी है जिस पर चर्चा करना, जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। हम युद्ध की बात नहीं करें, हम बात करें हैं उन शहरों की जो दुनिया में आगे बढ़ते हुए शहर हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी भरपूर है, जहां पर यातायात बहुत अच्छा है और जहां पर सारी सुविधाएं हैं। बस एक चीज की प्रॉब्लम है, खास तौर पर से अगर मैं भारत में दिल्ली NCR की बात करूं, महिला सुरक्षा को लेकर अभी भी कुछ सवालिया निशान लगे होते हैं। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB 2022 की रिपोर्ट की तरफ गौर करा जाए तो 4,45,256 केसेस आए हैं, और अगर एवरेज देखा जाए तो 51 कंप्लेंट्स पर आवर के हिसाब से निकलती हैं। समझ रहे हैं, हर घंटे हमारे देश में 51 कंप्लेंट्स जो होती हैं वो सिर्फ महिलाओं के अपराध के लिए होती हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो रेप, किडनैपिंग या फिर डोमेस्टिक वायलेंस और असॉल्ट के केसेस मुख्यतः शामिल होते हैं। अब ये जो आंकड़ा है ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसी जगहों को हाईलाइट करता है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं से जुड़े हुए अपराध ज्यादा नोट किए गए हैं या फिर ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। आज महिला सुरक्षा को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं हमारी खास मेहमान से, इंस्पेक्टर माया, जो कि वुमेन सेल NIT की SHO हैं, और सुरक्षा संवाद में आज हमारी खास मेहमान हैं, जिनसे हम बहुत सारे सवाल जानने वाले हैं और बहुत सारे जवाब इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर ही लेकर आई हैं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो दिन भर या फिर मैं कहूँ दिन रात 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, और अनगिनत केसेस ये अपनी आंखों से देखती हैं रिपोर्ट होते हुए और उनको सॉल्व भी करती हैं। तो माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो माया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, आप एक SHO हैं NIT फरीदाबाद के महिला थाना में, और ये एक ऐसा थाना है जहां पर मैंने देखा अक्सर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि मैं भी जानती हूं इस जगह के बारे में, तो वहां पर हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहां पर हमेशा लोग आते रहते हैं, एक रश वाला महिला थाना माना जाता है। तो एक SHO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटी होती है, क्या रोल होता है, पहले तो वो बताएं।
1: जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महिला थाना NIT जो है वो हर वक्त भीड़ से मतलब भरा ही रहता है, क्योंकि महिला थाना NIT पूरे NIT जोन का एक ही महिला थाना है, और इसमें काफ़ी गांव मतलब यहां से लेकर धोस तक के एरिया के गांव इसमें आते हैं। तो जो भी महिलाएं आती है वो सबसे पहले अपनी रिपोर्टिंग जो करती है वो महिला थाना में ही करना चाहती हैं।
0: जी
1: देखिए, इसमें प्रबंधक अफसर मतलब मेरा इसमें सबसे बड़ी ड्यूटी ये रहती है कि मैं जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं उनके लिए भी एक ही एडवाइस है कि कोई भी महिला किसी भी टाइम आती है तो उसकी बात को अच्छे से सुना जाए, उसको न्याय दिया जाए, उसके साथ चाहे कैसी भी घटना है, चाहे मारपीट की है, चाहे बलात्कार की है, और चाहे किसी फोन के द्वारा कोई मैसेज या धमकी भरे इस तरह

0: ब्लैकमेलिंग की है। तो मेरा सबसे पहला तो यही वो रहता है कि कोई भी महिला यहाँ से बिना न्याय मिले जाए ना, और उसको यहाँ से जिस आशा को लेकर वो आई है वो उस पर हम पूरी तरह खड़े उतरे। और क्योंकि अगर हमारा इस तरह से भूमिका नहीं रहेगी तो महिलाओं में जो डर है वो बना ही रहेगा, जिसको खत्म करने के लिए ये महिला थाने जो है खोले गए थे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि महिला थाना खोलने का भी एक पर्पज रहा है कि पहले महिलाएं जो पीड़ित महिलाएं होती थी वो जेंट्स को, जो क्योंकि अधिकतर जो थानों में है वो जेंट्स ही होते हैं, आईओ जो होते हैं, तो जो भी विक्टिम जाती थी वो खुल के अपनी बात नहीं बता पाती थी। अब महिला थाने खुलने के बाद महिलाएं अपनी बात को अच्छी प्रकार से वहाँ रख सकती हैं। और मैं बिल्कुल अपने जो मेरे आयु हैं वो बिल्कुल उनकी बातों को सुनते हैं, मैं भी उनकी जो पीड़ित है उनकी बातों को सुनती हूँ, और फिर उनको जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है वो हम तुरंत तरीके से लाते हैं।
1: जी जी, माया जी बहुत सारी बातें हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन फरीदाबाद का जब नाम आता है तो महिला सुरक्षा को लेकर प्रश्न तो उठता ही है, क्योंकि दिल्ली NCR ऐसी जगह है जहां पर दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, जिसके बाद हर इंसान की जो कहते हैं रूह तक कांप गई कि ऐसा अपराध भी हो सकता है। 2012 के बाद, ये 2012 की बात है, जिसके बाद बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी इस तरीके की वुमेन सेफ्टी को लेकर, लोगों में जागरूकता भी आई। बट हाल ही में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं दिल्ली NCR में ही, जहां पर नोएडा में एक बहू को जला दिया जाता है और उसकी वीडियो तक वायरल हो जाती है और फिर उसके बाद केस जो है वो आगे चलता है। इसके अलावा फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो एक केस अभी थोड़े टाइम पहले आया था जहां पर बहू को घर के सामने ही गड्ढा खोद के उसकी डेड बॉडी को गाड़ दिया और उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। ये केस भी फरीदाबाद का है। दूसरा एक हाईलाइट हुआ केस जहां पर लड़की को किडनैप कर लिया गया, चलती गाड़ी में उठा के ले गए। अब इनकी सच्चाई क्या है, किस तरीके के केसेस होते हैं, तो वुमेन सेफ्टी को लेकर फरीदाबाद में अभी परिस्थिति क्या है?
0: देखिए, फरीदाबाद में वुमेन सेफ्टी को लेकर हमें समय समय पर हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो दिशा निर्देश भी देते रहते हैं
1: जी।
0: और वो दिशा निर्देश यही है कि जो भी विक्टिम है सबसे पहले उसको सुना जाए, उसकी सच्चाई को सामने लाया जाए, और फिर जो आरोपी है उसको बिल्कुल भी बख्शा ना जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि फरीदाबाद का एक केस था कि जिसमें एक महिला मतलब रात में घर से निकली और उसको फिर दो व्यक्तियों के द्वारा मतलब लिफ्ट दी गई, तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो केस बिल्कुल सच्चा था और लेकिन उसमें अपराधियों को तुरंत पकड़ा भी गया। तो ये पुलिस की ही एक बड़ा प्रयास और पुलिस की कड़ी मेहनत से ये सारी सफलताएं मिलती हैं। तो फरीदाबाद पुलिस जब भी इस तरह का कोई क्राइम होता है तो ऐसा नहीं है कि वही थाना सिर्फ उस पर कार्रवाई करता है, बल्कि पूरी पुलिस उस पर, जैसे CIA है तो वो सारी टीम लगकर, हमारा एक ही मतलब उद्देश्य होता है कि जो आरोपी है वो मतलब छूट ना जाए या कहीं भाग ना जाए।
1: जी जी, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे हम बाहर के देशों में जाते हैं तो वहां पर सड़क पर निकलते हुए घबराहट नहीं होती, रात को भी आप निकल रहे हैं, ऑल्दो क्राइम वहां भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होते, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि यहाँ पर जिंदगी जो है इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है। लेकिन अपने देश में राजधानी के साथ सटे हुए वो शहर जो देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं, वहां पर लेडीज को आज भी या तो गर्मियों की दोपहर हो तो निकलते हुए, क्योंकि सुनसान रोड होती है तो डर लगता है, हालांकि आबादी बहुत है फिर भी कहीं ना कहीं डर लगता है। सो ऐसा क्यों होता है?
0: देखिए, इस बात का जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगी कि एक तो फरीदाबाद में जो पॉपुलेशन है वो मतलब सिर्फ एक फरीदाबाद लोकेलिटी की ही नहीं है, मतलब बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मतलब हर जिले से, हर स्टेट से लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं। और जबकि पुलिस के द्वारा ये बार बार अभियान चलाया भी गया है कि जो भी अपने किराएदारों को रखे हुए हैं तो उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, लेकिन ये कुछ एक जो इस तरह की घटनाएं होती हैं इसमें सबसे बड़ा मतलब कमी हम पब्लिक की मानते हैं कि वो अपने घर में रखे हुए किसी भी मतलब किसी को भी रखते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं देते,
1: किराए पर
0: रखते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी पुलिस को नहीं देते, और एक ऐसा ही व्यक्ति मतलब क्राइम करके फिर भाग जाता है और ये फिर जब खबर आती है या पुलिस तक खबर पहुंचती है फिर हम उसमें लगते हैं, लेकिन फिर वो एक डर का माहौल तो बिल्कुल बनेगा क्योंकि आए दिन जैसे ऐसी घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है न्यूज़पेपर के द्वारा, लेकिन पुलिस अपना पूरा प्रयास करती है इसको कि इस तरह का कोई भी घटना घटित ना हो। और फरीदाबाद पुलिस के द्वारा मतलब कॉलोनियों में भी और स्कूल कॉलेजेस में भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 112 नंबर जो है 112 नंबर सभी को बताया जा रहा है, उसकी जानकारी दी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब पब्लिक की स्ट्रेंथ को लेकर लेकर और एक पुलिस की जो संख्या है उसको लेकर थोड़ा सा ये एक गैप है कि क्योंकि पुलिस हर जगह हर समय मौजूद नहीं
1: हो सकती। अवेयरनेस अपने आप में आम जनता को
0: बिल्कुल वो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है समय समय पर।
1: बहुत सारी हमारे यहाँ कॉलोनीज हैं, मैं नाम अगर लूँ तो संजय कॉलोनी है, एसडीएम नगर जिसको कहते हैं, डबुआ है, पाली है, ये सारे एरियाज वहाँ है जहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं
0: बिल्कुल,
1: और एक एक घर में पांच पांच किराएदार रह रहे हैं, यानी एक एक कमरा जो है वो दिया गया है। ज्यादा इसमें मजदूर वर्ग होता है या फिर अलग अलग जगह से आए हुए वो लेबर हैं जो इधर उधर काम करने जाते हैं, और इनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता, जो आप कहना चाह रही हैं कि हमने कहीं पर भी कोई दर्ज नहीं कराया हुआ है कि इनका नाम क्या है, इनका आधार कार्ड या वेरिफिकेशन नहीं है, सो वो कैसे कराएं, क्योंकि लोग अभी भी नहीं कराते। और हम कॉलोनीज को छोड़ दें तो मैंने बड़े बड़े घरों में देखा है वहां कोई ऐसे वेरिफिकेशन नहीं कराता है।
0: देखिए ये पुलिस के द्वारा एक पखवाड़ा भी चलाया जाता है कि जो भी मतलब जिनके घर में भी किराएदार रहते हैं, अभी पीछे जो हुआ जैसे कि ये एक पखवाड़ा चला था पीछे कि जितने भी मतलब बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं तो क्या आपने उसकी वेरिफिकेशन करवाई है, लेकिन एक बहुत बड़ा मतलब नंबर निकल के आया सामने कि
1: नहीं
0: कराई हुई थी। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि संजय कॉलोनी जो है वहाँ पर मैं खुद बताना चाहूँगी कि मेरे पास पूरी रात फ़ोन बजते रहते हैं कि मेरा पति पीट रहा है या मेरी बेटी आज घर नहीं आई है, तो संजय कॉलोनी का जो नाम है वो सबसे ऊपर बिल्कुल ठीक लिया है
1: एनआईटी एरिया में।
0: हाँ हाँ, तो संजय कॉलोनी में इस तरह का ये घटनाएं होती रहती हैं, और वो शायद इसलिए होती हैं क्योंकि वो लोग अवेयर ही नहीं हैं, और उनको अगर हम पुलिस अवेयर भी करना चाहते हैं तो भी वो नहीं होना चाहते, तो ये एक उनकी सोच पर भी निर्भर करता है। लेकिन जब भी वो पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस उनके साथ खड़ी है, उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़ी है।
1: जी जी, ये तो बात हो गई किराएदारों की। और जैसा कि अभी हाल ही में हमने थोड़े टाइम पहले देखा भी था, अल्फला यूनिवर्सिटी में जो केसेस निकले वहां पर भी जो किराएदार थे, जो प्रोफेसर्स थे या डॉक्टर्स थे, उनके भी कहीं पर भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। सो ऐसे मैटर से बचने के लिए भी मुझे लगता है कि जरूर कराना चाहिए, ऐसे केसेस ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं आगे जाकर।
0: बिल्कुल, ये देखिए ये जो दिशा निर्देश है ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही है सभी मकान मालिकों, सभी स्कूल कॉलेज को कि भाई अपने यहाँ पर जो भी कार्यरत है उनकी वेरिफिकेशन आप करवाए, और कंपनी के लिए भी ये एक मतलब दिशा निर्देश जरूर दिया जाता है, लेकिन लोग अपनी जिम्मेवारी निभाने शायद पीछे हटते हैं। लेकिन अभी पीछे पुलिस ने अल्फला यूनिवर्सिटी में ये जो मतलब हादसा हुआ, तो इसके बाद पुलिस ने खुद घर मतलब डोर टू डोर जाकर लोगों की वेरिफिकेशन की है, और मतलब सबको अवेयर भी किया है। तो ये पुलिस मतलब समय समय पर करती रहती है इस तरह के प्रयास, लेकिन हमारी तो एक मतलब पब्लिक से भी, आम पब्लिक से भी हम यही गुहार करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े रहकर इस काम में हमारी मदद करें।
1: जी बिल्कुल,
2: तो बहुत सारी बातें आज हम कर रहे हैं इंस्पेक्टर माया से, जो कि SHO हैं वुमेन सेल NIT फरीदाबाद की, और बहुत सारी बातें हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक SHO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक आम महिला किस तरीके से खुद को सशक्त महसूस कर सकती है। बातें करेंगे और भी बहुत सारी, लेकिन वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सुरक्षा संवाद।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में। आज SHO वुमेन सेल फरीदाबाद NIT इंस्पेक्टर माया जी से, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महिलाएं इस शहर में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, और महिला दिवस तो हम मनाते हैं लेकिन क्या महिलाओं की वो बेसिक सुरक्षा जो उनके घर, उनके रास्ते या उनके ऑफिस, हर जगह पर उन्हें महसूस होनी चाहिए, क्या उन्हें मुहैया कराई जा रही है, और अगर नहीं तो फिर वो अपना हक कैसे ले सकती हैं। बहुत सारी बातें जारी हैं हमारी।
1: अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंप्लेंट्स की जो अक्सर आती हैं आपके पास। हमने जो देखा है या जो आंकड़ों में देखा है, ज़्यादातर रेप के केसेस हैं या डोमेस्टिक वायलेंस है या किडनैपिंग के मामले हैं, और किस तरीके के मामले सबसे ज़्यादा आप डे टू डे रूटीन में देखती हैं?
2: देखिए, ये रेप केसेस जो है महिला थाने में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि कुछ बच्चे जो 2 या 3 साल तक साथ रहते हैं, फिर वो शादी के लिए लड़का मना कर देता है, तो इस तरह का रिपोर्टिंग ज़्यादा है, लिव इन वाला हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन कानून के उसमें ये अपराध है, तो हम उसको बिना, मतलब लड़की की सुन के बिना देरी के उसको दर्ज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, और अगर लगता है कि लड़की बिल्कुल सच बोल रही है तो हम अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देते हैं। लेकिन अगर लड़का फिर भी अपनी मतलब बचाव पक्ष में कोई भी साक्ष्य सबूत रखता है तो हम उसके साथ भी ऐसा कोई अन्याय नहीं करते कि उसकी ना सुनी जाए। लेकिन मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ हैं वो 4-4 साल अगर साथ रहती हैं तो उनको फर्स्ट डे ही, बिल्कुल अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो फर्स्ट डे ही आकर मतलब उसकी आवाज़ उठाएं। और महिला थाने में डोमेस्टिक वायलेंस जो आज के दिन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि लोग शायद आज भी महिलाओं को कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वो दबके ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमारे सामने ये विचारों का, मतलब एकदम से उनका आमना सामना हम करवाते हैं, तो पुरुष जो है उनका विचार ये निकल के आता है कि मैं इससे नौकरी नहीं करवाना चाहता, और ये फिर भी जाती है, तो इस बात को भी लेकर डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक बड़ा रूप ले लेता है
1: जी।
2: और फिर महिला को हार थक के हमारे पास आना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और महिला थाने में पॉक्सो केस जो है, बच्चों से संबंधित केस, वो भी बहुत ज्यादा आजकल, क्योंकि उसमें ये होता है कि बच्चों के साथ बैड टच बहुत ज्यादा,
1: बहुत कॉमन हो गया।
2: हाँ, बहुत कॉमन हो गया है, और ये सिर्फ हम अवेयरनेस से ही इसको दूर कर सकते हैं, या हम माँ बाप को भी अवेयर करते हैं, बच्चों को भी अवेयर करते हैं, तो ये हमारा प्रयास जारी रहता है
1: जी। जैसे नोन लोग जो हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, अगर वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों को पता होना चाहिए और पेरेंट्स को पता होना चाहिए।
2: ये देखिए, हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी स्कूलों में इस तरह से बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, और एक खुले शब्दों में भी, मतलब थोड़ा सा जैसे देख लेते हैं कि बच्चा किस तरह से समझेगा, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम बच्चों को समझाएं कि आपके साथ बैड टच कब कब होता है और बैड टच होता क्या है, तो बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया जाता रहा है पुलिस के द्वारा भी, और टीचर को भी हम काफी मतलब काउंसलिंग करके समझाते हैं
1: जी, जी।
2: और पेरेंट्स को भी
1: जी जी। माया जी, पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि बदलाव आया है। पहले कंप्लेंट्स बहुत कम नोटिस होती थी, शायद सोशल मीडिया की वजह से या अवेयरनेस की वजह से। अब क्या सिनेरियो है, कंप्लेंट ज्यादा आती है, अवेयरनेस ज्यादा है महिलाओं में?
2: मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अब महिलाएं जो है अपनी कंप्लेंट करने से बिल्कुल भी डरती नहीं है। उसका एक रीजन ये है कि क्योंकि उनको पता है कि उनके जिले में जो है महिला थाना है, और महिला थाना उनके लिए ही खुला है, क्योंकि मतलब बार बार जैसे दुर्गा शक्ति है, 112 की गाड़ियां हैं, तो और स्कूलों में ज्यादातर महिला थाना ही जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, तो उसके कारण ये बिल्कुल ठीक है कि कंप्लेंट अब ज्यादा आने लग गई है, चाहे वो फोन के द्वारा है, चाहे मेल के द्वारा है, और चाहे 112 पे, चाहे सीधे तौर पर थाने में आकर दी गई हो
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इतनी कंप्लेंट्स आती हैं, ऑन एन एवरेज एक दिन में कितनी कंप्लेंट्स आती होंगी आपके पास?
2: देखिए, अगर मैं अपने थाने का पिछले महीने का जनवरी का मैं बताऊं तो 70 कंप्लेंट जो है मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड मुझे मिली है, और उन पे फिर वुमेन सेल जो है हमारा वो काम करता है, वहाँ पर एक अलग सेल बनाई हुई है थाने में, तो उसके उनके द्वारा वहाँ पर काम किया जाता है,
1: काउंसलिंग करना
2: बिल्कुल
1: जी जी। तो 70 कंप्लेंट सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की,
2: सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस।
1: और आपका जो स्टाफ है वो कितना है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि पुलिस खाली बैठी हुई है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पुलिस वाले जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, और ये एक आम धारणा बनी हुई है।
2: देखिए जो पब्लिक, जो जनता, जो इंसान महिला थाने में या किसी भी थाने में आता है, तो अगर वो वहाँ पर 3 या 2 घंटे भी रह जाता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि पुलिस बहुत काम कर रही है। क्योंकि महिला सेल में मैं बता देती हूँ कि एक ASI सोनिका जो पोस्टेड है और उसके हमने उसकी मदद के लिए 2 लेडी कॉन्स्टेबल वहाँ बिठा रखी हैं। तो देखिए 70 कंप्लेंट पे मतलब 1 दिन में 10 लोगों को हम बुलाते हैं तो वो 50 की भीड़ आती है, लेकिन उसको सुन रही होती है एक हमारी आईओ, और फिर उसके बाद मैं सुनती हूँ। तो मतलब 10 को सुनना और फिर उससे अलग भी केसेस हमें सुनने होते हैं। तो महिला थाने में 25-26 का स्टाफ है, लेकिन उसमें जो आईओ है वो 8 या 9 ही काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन शायद हमें मतलब इस तरह से काम करने में कोई परेशानी नहीं आती है क्योंकि हम अपना मैनेज करके रखते हैं। लेकिन बस ये ही हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी बिना सुने चला ना जाए।
1: बिल्कुल। अब ये कैसे आप पता लगाती हैं, क्योंकि बहुत सारी फेक कंप्लेंट्स भी आती हैं आज के टाइम पे। हमने बहुत कुछ देखा है इंटरनेट पे और बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं मीडिया में, जो फेक होते हैं। ज़्यादातर डिवोर्स केसेस में हमने ये देखा है, बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वॉयलेंस के ज़रिए महिलाएं जो हैं आजकल थोड़ा पुरुषों पर भी इल्ज़ाम लगाती हैं जो जेन्युइन नहीं होते हैं। वो कैसे आप पता लगाती, क्योंकि इनमें समय बहुत वेस्ट होता है अगर कंप्लेंट फॉल्स हो तो।
2: बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ कंप्लेंट बिल्कुल ही निराधार मतलब बिल्कुल झूठ पे ही आधारित होती है। उसका पता हम ऐसे लगाते हैं कि हमारे पास जब फर्स्ट टाइम कंप्लेंट आती है तो हमें पढ़ते ही पता चल जाता है। और हमारा सबूतों पे और साक्ष्यों पे मेन हमारा फोकस होता है कि आप अपने पक्ष में क्या सबूत दे सकती हैं। और हम अपने तौर पर भी पड़ोसियों से या फिर रिश्तेदारों से और गुप्त सूत्रों से भी हम पता लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहीं बैठे बैठे हम डिसीजन ले लेते हैं। तो जो भी काउंसलिंग के दौरान लड़का या लड़की या कोई भी फैमिली मेंबर या कोई थर्ड पर्सन मतलब उनके पक्ष में कोई गवाह या कोई सबूत आता है तो हम उसको फाइल पे लेते हैं। और ऐसा एक तो देखिए पुलिस का जो IQ लेवल है वो बहुत हाई लेवल का होता है, ये मैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास कोई ऐसी डिग्री है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी होता है, 25-25 साल की नौकरी है। तो वो दिन प्रतिदिन हमारा यही काम है और मेन फोकस हमारा होता है सबूतों पे और गवाहों पे, तो हम डिसीजन ले पाते हैं।
1: जी, यानी हर केस के लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है।
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद जो है वो कदम,
2: क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करके ही सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है। और पुलिस का एक ही मेन मतलब हमारी सोच होती है कि कोई निर्दोष अंदर जाए ना और दोषी छूटे ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बहुत सारी बातों का जिक्र और भी चलता रहेगा। आपके अगर प्रश्न है या आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर बहुत आसान है, 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और ये सारा पॉडकास्ट जो है वो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसे इस जानकारी की बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि पुलिस जब आपके साथ सहयोग में होती है तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, आप एक सशक्त महिला भी बन जाती हैं। तो ये जानकारी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, प्रोग्राम का नाम सुरक्षा संवाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, जिसे हम लेकर आए हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ सहयोग से। और आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के बारे में कि महिला फरीदाबाद में अगर अपने घर से बाहर निकल रही है तो कितना सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि हाल ही में हुए कुछ ऐसे केसेस हैं जो पिछले कुछ समय से हाईलाइट हुए हैं, लेकिन उसमें गलती किसकी थी, क्या गलती परिवार की थी, क्या गलती उस महिला की या फिर उस बेटी की थी, या फिर गलती है सड़क पर चलने वाले उस पुरुष की जो हर महिला को अपनी जायदाद समझ लेता है। बातें करें हैं बहुत सारी। माया जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जो कि SHO हैं महिला सेल NIT फरीदाबाद में। माया जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाएं जो होती हैं, बहुत आपके पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती होंगी जहां पर अपराध होने के कई सालों बाद लड़कियां या महिलाएं आती हैं कंप्लेंट लेकर। डोमेस्टिक वायलेंस शादी के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है कईयों के साथ, या फिर इतना ज्यादा उन्हें ट्रॉमेटाइज किया जाता है, लेकिन वो उठ के आती हैं जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है, तब तक वो सहनशीलता से सहती रहती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में केसेस देखे हैं, लिव इन में भी ऐसे, जैसे आपने बताया कि बहुत बार ऐसा कुछ होता है। सो एक लेडी को, एक या फिर एक टीनेजर है, बच्ची ही है, उसे कब आपको अप्रोच करना है, कौन कौन सी परिस्थिति में, चाहे वो रेप का केस हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो पॉक्सो में आ रहा है, बैड टच गुड टच की हम बात करें, कब आपके पास आना है?
1: देखिए, जब भी किसी महिला या बच्चे के साथ या लड़की के साथ जब भी फर्स्ट टाइम कोई मतलब अपराध हो रहा है, चाहे उसको धमकाया जा रहा है, चाहे उसको दबाया जा रहा है, या उसके साथ मारपीट है, तो मुझे लगता है कि उनको फर्स्ट डे ही उस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वो फर्स्ट डे ही आवाज उठाएगी तो उसका मतलब जो है उसके साथ इतना बड़ा अपराध होने से भी बचेगा, और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई को मतलब एक सबूतों के साथ बहुत अच्छे से मतलब उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो फर्स्ट डे ही किसी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो पहले ही दिन आवाज उठाएं और अपनी मदद मांगे।
0: जी जी, यानी अगर घर में आपके साथ कोई बदतमीजी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में अगर कुछ आ रहा है, कोई आप पर हाथ उठा रहा है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है, इसको समझिए और कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराइए। माया जी, आपने लिव इन के बारे में अभी बात करी थी, और लिव इन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, लिव इन रिलेशनशिप्स मेट्रो सिटीज में डे बाय डे कॉमन होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: कॉलेज के बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं, चार चार पांच पांच साल रहते हैं और फिर वो रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर अचानक से कहीं पे कोई उनमें, बहुत सारे अखबार में हम केसेस पढ़ते हैं जहां पर मर्डर्स हो जाते हैं, रेप्स हो जाते हैं। सो ये कैसी सिचुएशन हो जाती है, क्या इसके लिव इन के नेगेटिव्स क्या सामने आते हैं आपके सामने?
1: देखिए, जितना इन्वेस्टिगेट मैंने किया है, क्योंकि मैं पर्सनली हर केस को देखती हूँ, तो हर लड़की को मैं सुनती हूँ, तो कुछ एक में तो बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल ठीक लड़कियाँ रोती हैं कि मतलब मैं 4 महीने से इसके साथ थी या 2 साल से इसके साथ थी, लेकिन मैं अब बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसकी हैबिट का, इसके बैकग्राउंड का, इसकी आदतों का पता लग गया है कि ये गलत लड़का है, और अब मैं जब इससे पीछे हटना चाहती हूँ तो ये मुझे मेरी वीडियो दिखाता है। क्योंकि आजकल एक ये बड़ा चलन में है कि हर लड़का मतलब अपने फ़ोन में लड़कियों की फ़ोटो मतलब रिलेशन बनाते समय तक की वीडियो जो है वो रख लेते हैं, और फिर जब लड़की मतलब बैक होना चाहती है तो वो उसको दिखा के ब्लैकमेल करते हैं। तो मतलब हम 100% इसको झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ एक में सबूत मिलते हैं तो हम बिल्कुल लड़की का साथ देते हैं और जो लड़के को पकड़ के बिल्कुल उसको सजा दिलवाते हैं। लेकिन कुछ एक में क्या होता है कि लड़का शादी करना चाहता है, लड़की बिल्कुल ये कि नहीं मैं नहीं करना चाहती हूँ, और फिर वो रिपोर्टिंग करती है, तो हम ऐसे केस में बिल्कुल मुकदमा दर्ज हम जरूर करते हैं लड़की के बयान पर, लेकिन जो सच्चाई होती है उसके आधार पर ही हम, अगर झूठा है तो झूठा है, फिर हम लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई कर देते हैं।
0: जी,
1: 182, बिल्कुल,
0: यानी अगर कोई लड़की फॉल्स केस करी है तो उसके अगेंस्ट
1: बिल्कुल हम अगेंस्ट 182 की कार्रवाई करते हैं, 217 BNS की।
0: और इसमें क्या प्रावधान होते हैं?
1: इसमें 6 महीने तक की सजा होती है, और अगर कोर्ट चाहे तो उस पर एक फाइन भी रख सकती है।
0: जी, यानी जो लड़कियां फॉल्स केसेस जो करती हैं लड़कों पर, उनको भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आप पर भी उल्टी कार्रवाई हो सकती है, और फिर लड़के का नुकसान हो या ना हो, आपका नुकसान बड़ा हो सकता है। सो फोटो शेयर करने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम साइबर फ्रॉड के अंडर भी रखते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने केसेस भी सुने हैं जहां पर लड़कियों को उनकी फिल्म, उनकी वीडियो के जरिए जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऑनलाइन डाल दी जाती हैं, पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं और फिर लड़की कोई गलत कदम उठा लेती है। तो साइबर के तरीके से कैसे उनको, लड़कियों को, लेडीज को जो है फंसाया जाता है?
1: देखिए, अभी जितने भी केस हैं, मतलब ये साइबर, मैं इसको कम मानूंगी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें हम उसको दर्ज करते हैं और उसमें इंस्पेक्टर लेवल का ही जो अधिकारी होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है। तो मैंने खुद से ऐसे केसेस, 12 केसेस अभी मैंने किए हैं और अभी हाल ही में मतलब 2-3 केस ऐसे हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये लोग जो है किसी वेबसाइट पे मतलब दोस्ती करते हैं, तो वेबसाइट पे दोस्ती करना मतलब वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक अनजान, वहाँ पर अनजान लोगों का ग्रुप है, कौन है क्या है, वो बस कुछ तारीफ करके लड़कियों को अपने झांसे में लेते हैं
0: सोशल मीडिया
1: से। तो इंस्टाग्राम जो है इसका सबसे बड़ा मतलब एक सामने आता है, चैनल सामने आता है कि इस पे सबसे ज्यादा, और फिर लड़कियों के फोटो को एडिट करके उनको डराया धमकाया जाता है, तो लड़कियां बताती नहीं है डर के मारे। उसमें स्कूल के भी बच्चे हैं और कुछ एक मतलब एक बैंक मैनेजर का भी केस मेरे सामने आया, तो मतलब बड़ा अचंभा होता है कि एक बैंक मैनेजर होने के बावजूद भी मतलब आप इस तरह के क्राइम को सहते आ रहे हैं और एक साल बाद आप आवाज उठा रही हैं।
0: मैं चाहूंगी आप थोड़ी केसेस भी इलैबोरेट करें, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, वो इनसे सतर्क हो जाए।
1: देखिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, मतलब जिसको हम साइबर फ्रॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि सबको साइबर फ्रॉड का ज़्यादा मतलब एकदम से क्लिक होता है दिमाग में, लेकिन जब भी किसी लड़की की फोटो अगर कोई भी एडिट करके किसी भी साइट पर डालता है, चाहे फेसबुक पे है चाहे कहीं, तो उस पे आप बिल्कुल भी डरे ना, क्योंकि वो आपकी, उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत दें और उसका जो मुकदमा दर्ज होगा वो आईटी एक्ट में होगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी। लेकिन अगर लड़की जब तक बताएगी नहीं तो पुलिस उसमें कुछ कर नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ एक तो मतलब जानकार ही उनको बदनाम करने की नीयत से ऐसा करते हैं, अलग सिम ले लेंगे या फ्रॉड नंबर से उसको करेंगे और फिर वो एक लिंक भेजते हैं, लिंक जो लड़की है या बच्चा है कोई भी है वो उसको क्लिक कर देता है, तो उसका पूरा फोन हैक हो जाता है और वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है वहां से, फिर पैसे मांगने का भी एक सिस्टम शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में मेरे पास मतलब आते रहते हैं केसेस, तो अभी एक बच्चे का केस ऐसे आया था कि वो पिछले एक साल से इसी तरह से इंस्टाग्राम पे वो जुड़ी और वहाँ पर उससे जो लड़का है, जो क्रिमिनल है, वो ना उसने लड़की ने लड़के को देखा है, बस वो इंस्टाग्राम से ही बातचीत होती है चैटिंग कर करके, लेकिन वो लड़की से उसकी न्यूड वीडियो भी मंगवा लेता है कि तुम अगर नहीं भेजोगी तो तुम्हारी ये फोटो जो है, जबकि वो एडिट की हुई फोटो थी, अगर उस बच्चे को इतना अवेयर होती वो तो शायद ना भेजती, फिर उससे पैसे भी लिए गए हैं। तो इस तरह के क्राइम जो है वो आते रहते हैं। और जो मैंने बैंक मैनेजर का बताया, तो मतलब वो तो मैरिड थी और 2 बच्चों की माँ भी थी, तो लेकिन उनको फिर बाद में बड़ा पछतावा हुआ कि काश मैं पहले ही ये रिपोर्टिंग कर देती। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जब भी घटना हो तो पहले ही दिन आप आवाज उठाएं। उसमें कई बच्चे या लड़कियां इसलिए नहीं आते हैं कि पुलिस हमें ही गलत बोलेगी। तो मैं बताना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से कि पुलिस बिल्कुल भी उनको गलत नहीं मानती है, ना ही उनको गलत ठहराती है, बल्कि हम उनको समझाते हैं और यही समझाते हैं कि आप विक्टिम हैं, कि आपको अवेयरनेस नहीं थी, आप जागरूक नहीं थे, आपको पता नहीं था कि ऐसा भी क्राइम होता है, लेकिन अब जब हो गया है तो आप यहाँ आए हो, तो आप बिल्कुल भी मतलब इसमें दोषी नहीं हो, आप विक्टिम हो और हम आपके साथ खड़े हैं। और हम उनको बताते हैं कि आप अपने साथ वाले बच्चों को या लड़कियों को या घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको ये चीजें बताएं, छुपाएं ना,
0: जानकारी दें कि कोई भी पिक्चर अगर आपकी एडिटेड है, AI जनरेटेड है और वो ऑब्सीन है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत 112 पे कॉल करें या अपने नजदीकी महिला थाने में जाएं, वहां पर जाकर आप कंप्लेंट करें। महिला थाना अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाएं, पुलिस चौकी में जाएं, पर जाकर उनकी हेल्प जरूर लें, क्योंकि इस तरीके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला को शिकार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनका ये बिजनेस होता है, उनका ये बिजनेस मॉडल होता है, जिससे बचने के लिए आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपकी उम्र 14 साल हो, 24 हो, 34 हो या फिर 50 हो, आपको अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने के लिए अवेयर होना जरूरी है। बहुत सारी बातें और भी होती रहेंगी, बहुत सारी जानकारियां और भी शेयर करते रहेंगे आपके साथ, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप सुरक्षा संवाद सिर्फ और सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर।